इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया, जिसने किया सिद्क बेड़ा पार हो गया।

पेट भर के रज के खाइया अखां दियां खखड़ियां वेख के निहाल होईयां। गुरु नानक दी नजर हो गई अख दी खखड़ी ते। अंब ते अनार मर्दाना तोड़ तोड़ खाऊंगा। ऐसे अमृत फलां दा स्वाद लै रहा

0: जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना, ते इस दा नित कर्म है। मर्दाना काबू आ गया, हुण अग बाल के अग नूं तेज कीता, ते तेल जिले उबलन लगा ना, ते मर्दाने नूं चुक के कड़ाई विच सिटन ही लगा सी कि धन गुरु नानक पातशाह इधर कहन लगे, बालिया आ मर्दाना फिर पौजल विच फस गया। महाराज ये तुहाडे आखे भी तां नहीं ना लगदा, बचन भी तां नहीं मनदा ना। कहन लगे भाई नाल आए दी लज होंदी है, नाले सानू इहदे नाल बड़े काम हन। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: धन गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा करके अंतरदृष्टि नाल उथे पहुंच गए, ते जां मर्दाने नूं तेल विच सुटन लगा तां तेल ठंडा शीत वर्गा हो गया। हैरान हो गया कौड़ा राक्षस, भाई अग बल दी है, लाटा भी निकल रही हन, पर इना विच गरमाई किधर गई है। तेल नूं हाथ लाया तां ठंडा बर्फ होया होया, ते मुड़ के वेखदा है तां फिर धन गुरु नानक पातशाह दे सोहणे दीदार हो रहे हैं। दीदार करदियां ही, दर्शन करदियां ही अंतःकरण शुद्ध हो गया। वो पिछला समा याद आ गया जदों शराप होया सी, याद आ गया कि मैं राजा जनक जी दे पास रसोईया सा, ब्राह्मण सा, रसोई तैयार करदा सा, पर महापुरखां दा शपथ रिखियां दा भोजन सी, ते जदों भोजन बन गया ता मेरा मन ललचा गया, मैनू भुख ने सताया बड़ा, ते मैं उस भोजन नूं जूठा कर दिता, खा लिया। जदों ओ भोजन खा के जूठा कर दिता, तां सपत ऋषि जदों छकन लगे, तां कहन लगे भाई अज इस भोजन विच किसे ने झूठ वरताई है, पवित्रता नहीं नजर आ रही। जां पुछिया तां ए चट मन गया, महाराज मैनू बड़ी भुख लगी सी, मैं इस लई ए अवग्या कीती, ते राजा जनक ने शराप दिता सी, जाओ ए राक्षा, महापुरखां दा भोजन जूठा कर दिता ई। ते चरना ते डिग पिया, महाराज तुहाडा बचन तां कदे खाली नहीं जा सकदा, पर हुण मैनू तारोगे कदों। आख्या तूं निम्रता दे नाल बेनती कीती है, नाले तू हर महापुरख दी संतां महापुरखां दी सेवा करदा रहा, रसोई दी सेवा करदा रहा, जहां तैनू आप निरंकार आप नारायण कलाधार गुरु नानक सच्चे पातशाह आउणगे कलयुग दे विच, उना दे हथी तेरा उधार होवेगा। पर आ शीशा नाल रखी अपने, इस विचों अपना मुख वेख लिया करी, जदों तैनू इदे विचों मनुखां वाला मुख नजर आवे ना, समझ लई के अज तेरे उधार होण दा, तेरी कल्याण होण दा दिन है। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: बड़िया बड़िया नू खांदा रहा, पर अज जदों गुरु नानक दा दीदार होया, ते वेखदा शीशे विचों अपना चेहरा, तां देवत्यां वर्गा चेहरा नजर आया। ओ सारी घटना जो सी ओ फिल्म वांगू अखां को लंघ गई, ते नेत्रां तो जल नहीं रुकदा, चरना ते डिग पिया। ओ मेरा दे साई, बख्शिशां दे सागर, तू मेरे पापां ते रीझ के आया मैनू तारन लई, जितने कदम रखे मेरे सिर मथे, हुण कृपा करो मेर करो, दया दृष्टि करो, मैं कोई तुहाडी सेवा करां। ते जंगल विच जाके सोने सोने फल ले आया, धन गुरु नानक पातशाह जी दे अगे लिया रखे। धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपना मेहर दा हाथ जदों कौड़े राखश

ना पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविए नंग, ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया, जे मन विच दुई है तो फिर की कीता। गुरु पिज जांदा है, लेखा लिखिए मन के पाए, नानक पीजे खाचे ना। इसलिए भाई अपने मन नू गुरु दे चरणा विच जदो भी लियाओ, सब कुछ बाहर छड के आओ, और आके की कहो मेरा मुझ में किछ नहीं। गुरु नानक दे बख्शणिया कोई टाइम नहीं जे लगना, जेड़ा आप छोड़ बेनती करे, जेड़ा अपना आप छड दवे, अपनी हंकार कमंड छड के आखे की आखे, तुसी भी आखो कीर्तन दी समाप्ति कर।

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित हो के त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर दा नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा। सात संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहंदे हन, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी दा, जदों थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचिया तां उसके बदले

स्वामी सब समान मोली धरती मोरे आकाश मोली धरती मोरे आकाश मोली धरती मोरे आकाश मोली धरती मोरे।

बड़ी डूंगी बाज है। साड़ी कीती सेवा सिमरन ते गुरु की खुशी की मोहर लग गई है, ते किवें पता लगेगा? गुस्सा ना करियो, तुसी इत्थे घंटा डेढ़ आए हो, दो घंटे कीर्तन, गुरु की मोहर इत्थे लगी कि नहीं लगी किवें पता लगेगा?

ठाट तुम्हें उत्पन्न होना संपूर्ण जाति का राग है। वादी संवादी कुछ लोग मां ते सामन दे ते कई धा ते गंधार नू वादी संवादी बनते हैं, लेकिन ये गाण दे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाल यदि कोई होगी वादी संवादी भावे मां सावे भावे धा ते गावे।

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई पुराणा जी बैठे दर्शन करन चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखिया, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे है मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे को नहीं सह रहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। बादशाह मैनू तुसी आग्या दियो, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करने का फिक्र कितों पै गया, तू फना करने दी ताकत कितों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचो, ते साहिब हस के कहिंदे ने भाई पराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दी ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रज़ा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढ़े ते हथ रख दिता, सिखा विचों पार करके प्यारा जा हथ भाई पुराने दे मोढ़े ते रखिया। ओ जेरी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दिती, ठंड वरता दिती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया बड़ा मारिया, पर मालिक की बख्शिश की हुई धन गुरु अर्जन साहब की बख्शिश की सहनशीलता सदका फिर भाई पुराने ने हाए नहीं की, सी नहीं उचारी, वाहगुरू वाहगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तो पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जाए ना तो फिर हाए नहीं मुंहों निकलती, शुक्र मुंहों निकलता है, वाहगुरू मुंहों निकलता है।

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकण लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए हए, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिआं ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर? कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक बारी प्यार नाल बोलिए ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते इनूं पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पति बिरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सहुरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं, सत्कार अदब हर धर्म दा करना है। पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, वह किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारियां दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साई बाबे नू मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आ गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने,

भाई निर्मल सिंह जी नागपुर वाले, सतगुरु महाराज कृपा करन, बख्शिश करन, आप संगतां दा ये नवा साल खुशियां खेड़ियां विच इसे तरह ही गुरु चरणा विच बतीत होवे।